0: Krishna Priya Dasa on Lotus FM. 30 minutes of non-stop music that will keep you moving and grooving.
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया!
1: कभी किसी को दिल दिया?
2: किया!
1: मैंने भी दिया!

अब ऐसे मोहब्बत करे मर भी जावे तो जिंदा रहे। भुपिंदर और मिताली सिंह की आवाज थे, बड़ी बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इस गजल को पेश की, बड़ी सुतरी आवाज में, यू नो वेरी ब्यूटिफुल कामिंग वॉइस एंड ऑफ कोर्स ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड। एंड शुक्रिया शुक्रिया मेहरबानी टू ऑल आवर रेगुलरिज्म, हमारे प्रोफेसर दौलत रामदास साहब सॉल्ट रॉक के रहने वाले, शुक्रिया भाई साहब, ये आपकी मोहब्बत है। एंड देन ऑफ कोर्स आवर सिस्टर तराना इन जोहान्सबर्ग हु लव्स हर गजल, शी जस्ट लव्स गजल दिस वुमन। एंड देन आवर यंग कैस देयर हु आई वेरी लविंगली कॉल माय नीस, थैंक यू सो मच कैस फॉर योर beautiful comments as usual. Pran Mahavir Tugela ke rehne wale hain. And then we have Rahim Sheikh of Johannesburg. Shukriya bhai jaan, ye mohabbat hai aap log ki. And of course Anil Ramsarup, Anil Ramsarup all the way from Binoni, the brother that also loves his ghazals and he knows his artist as well, no doubt about that. Thank you so much, Anil Ramsarup. It's time for our Suno Siko segment of the program, and this evening I would love to do some shayari with you, two-line shayari. Shayari, of course, in English it is poetry. Shayari means poetry. Tere naam leta hai, dil dhadakna lagta hai. Tere naam lete hi dil dhadakna lagta hai, jaise khuda ne tujhe mere liye bana diya hai. तेरे नाम लेते ही दिल धड़कने लगता है, जैसे खुदा ने तुझे मेरे लिए बना दिया है. मीनिंग जस्ट टेकिंग योर नेम मेक्स माई हार्ट बीट फास्टर, एज इफ गॉड क्रिएटेड यू सोलली फॉर मी. तेरे नाम लेते ही दिल धड़कना लगता है, जैसे खुदा ने तुझे मेरे लिए बना दिया है. आप हमारे वो आदत बन गई हो, आप हमारी वो आदत बन गई हो, जैसे बदलेन में सदियां बीत जाएंगी. आप हमारी वो आदत बन गई हो, जैसे बदलेने में सदियां बीत जाएंगी. मीनिंग यू बिकम एन हैबिट ऑफ माय दिल टेक एजेस टू चेंज. वजह की क्या जरूरत है, वजह की क्या जरूरत है तुझे याद करने के लिए. वजह की क्या जरूरत है तुझे याद करने के लिए. तू एक ख्याल है जो कभी जहन से जाती ही नहीं. What need is there for a reason to remember you? You are a thought that never leaves my mind. वजह क्या क्या जरूरत है तुझे याद करने के लिए. तू तो एक ख्याल है जो कभी जहन से जाती नहीं. है इश्क तो फिर असर भी होगा, है इश्क तो फिर असर भी होगा, जितना इधर है उतना उधर भी होगा. इफ इट इज ट्रू लव देन इट विल हैव इट्स इफेक्ट. एज मच एज आई फील इट हियर यू मस्ट ऑल्सो फील इट देयर. है इश्क तो फिर असर भी होगा, जितना इधर है उतना उधर भी होगा. तुम्हारी बेचैन हो या सुकून, तुम्हारी बेचैनी हो या सुकून, आज तक समझ ना पाई मैं. Whether you are my restlessness or my peace, I have not been able to understand to this day. तुम मेरी बेचैनी हो या सुकून, आज तक समझ ना पाई मैं. Whether you are my restlessness or my peace, I have not been able to understand to this day. तेरे नाम लेते ही दिल धड़कना लगता है, जिसे खुदा ने तुझे मेरे लिए बना दिया है. आप हमारी वो आदत बन गई हो, जिसे बदलने में सदियां बीत जाएंगी. वजह की क्या जरूरत है तुझे याद करने के लिए. तू एक ख्याल है जो कभी जहन से जाती नहीं. है इश्क तो फिर असर भी होगा, जितना इधर है उतना उधर भी होगा. तो आइए अपनी बेहतरीन गजल को समाप्त फरमाते हैं.

एक ही तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। इस चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी बाल। एंड थैंक यू सो मच जूली शरीफ, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। केटी फ्रॉम पीटरमैरिट्सबर्ग, नारायण स्वामी कोलापुरी ऑफ क्लूफ एंड हिज फैमिली अगेन लिसनिंग थ्रू। एंड यू नो वी गॉट वेरी नॉलेजेबल गजल लिसनर्स आउट देयर। फातिमा फ्रॉम पोर्ट एलिजाबेथ, यू एब्सोल्युटली राइट, इट वाज मीना कुमारी एंड द फिल्म। आई वुड यू नो आवर प्रोफेसर दौलत रामदास इज मोर क्लूर, बट आई वुड थिंक द फिल्म वॉज दिल अपना प्रीत पराई, दिल अपना प्रीत पराई। एंड ऑफकोर्स येट इज वॉज ए मीना कुमारी स्टार। इट्स टाइम फॉर कम्युनिटी announcements and the Ibrahim Bhai friends and family. Ibrahim Bhai friends and family invite all to an annual Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam and Urus of Hazrat Sayyid Khalid Shah Bawa rahmatullahi alayhi, and this will take place on 17th October, venue Noddale Masjid Hall, Pietermaritzburg. Program will commence at 3 p.m. Supper will be served, and after Isha there's Mehfil Sama. Once again, remember, it's Ibrahim Bhai friends and family invited to the Milad and Urus of Sayyid Khalid Shah Bawa, 17th October, Noddale Masjid Hall. All are invited, inshallah. You're most welcome to come with your friends as well. And then we have one more invite here, and we have Milad al-Nabi Garvi Sharif Jalsa of Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani and Hazrat Alauddin Ahmed Sabir Park, Isa Lisa for all marhum. And this will take place at 1 Magma Close, Copesville in Pietermaritzburg. And this is still a long way off. It will be in November, Saturday, 28th November. As we get closer, we'll give you more information regarding this program as well. To Lijia program ko aage badhate hain. And yes, it's just gone 18:31, and you are with Ibi Mahmood, and the program is Guldasta.

तुम पसंद आए इत्तफाक था, तुम पसंद आए ये इत्तफाक था, तुम ही पसंद रह गई ये इश्क है, बस तुम ही तुम रहे। वाह ब्यूटिफुल गजल, एंड आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू हैव लव दिस गजल, जजिंग फ्रॉम द मैसेजेस दैट आर कमिंग थ्रू। असद ऑफ रिजर्वर हिल्स एंड हिज फैमिली, मरियम ऑफ चुंग्याट, अमृता एंड प्रकाश सिंह एज वेल, थैंक यू गाइज, एंड ऑफ कोर्स वसंती इंद्राणी कानेगी एज वेल ऑफ हाउटेंग, बीना, यस माई सिस्टर, थैंक यू सो मच। बट ऑफ कोर्स आई हैव ए कम्प्लीट प्ले लिस्ट टूडे, वुड नॉट बी एबल प्ले दैट सॉन्ग, बट थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। एंड देन देयर जाकिरा, जाकिरा ऑफ सेंट्रल जोहानिसबर्ग ऑल्सो ट्यून्ड इन। जाकिरा, यू गोना बी प्लीज्ड विद द वेरी नेक्स्ट गजल दैट्स कमिंग थ्रू, एंड आई नो यू आर अ फैन ऑफ दिस पर्सनैलिटी, काबुल बुखारी साहब की आवाज़ है।